dihidat Melrose Black taka dihot e daitsing e tson tle daitsing tson hita CKLB radio wake inleni at on the cat hani gtson mont adagant e hont hada gut in inlat hani ne di de tson gut di dani tson hai sin hot e tson when ni gtson hita du hani se ya gugi du e hita ni ga radio ke de di e yoe de hita ko hwa tson gut di a hwa hani hita ni ga de di hot e ये हिता गया ठीक है ऐडा इंसिंग ये तो फ्लेड इंसिंग तो इंसिंग ये आज तो ना क्या था निगो तो हिता CKLB Radio 101.9 FM वो क्या था वाह कौन है